अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा'स फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गुलबदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार, ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। अचम के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है पांच।

0: के तले।
1: अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाँव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किसका रास्ता देखे, ए दिल ए सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

वे तीर चल गए, अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत से, किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से

रूठो ना रूठो मेरी जान, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

रास्ता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगह है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

भोसले जी की आवाज में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से में एक सपना सा जगा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किए है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस्तेफाक है, आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किया है यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हमने पेश किए है विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहां मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोलत है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, लुकू सहंगा दो दू नंगाई। तो ऐसे मुर्गियां भी, ऐसे बकरियां भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवे यूना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करी, पहले वापन करी। मित्रों, ठीक है, करते रहो, जैसे जिए चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे। हाँ।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानि मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिली स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त। बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा, मर जाइए तो का करो, मैया रे मैया, तो

अभी जिंदा है क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रहली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे, ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों इस भजन को सुनकर

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर। क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दयोशीफायक हुआ बोलो मित्रों। क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट था एग्जैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी, कहने के नित खबून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के है।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुईती करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं, है? तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं। और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मीने हो फरकीफिंग, तब मरो लेके, अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो, पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए, तुम्हार कुछ थोड़ो लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे, तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेंगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेल्त है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कल में फिर भी हमके मिला था। ये सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन यजेलव और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए, नगो दूलाओ लो सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप देली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दान हार यू लाओ। खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहाँ पहुंच लो है। आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है। रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि ये उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत है कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत है। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का हो रहा है। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी है, कितने मेहनती है, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार कर रहे थे, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यही रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम, भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों। क्या

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो, युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरणा। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

मुकेश जी ने हमके सुना दी कि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई जाग के। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, और भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा एक रिश्ता की सबसे महंगी शर्त है।

ये दुनिया नहीं जागीर किसी के, सुंदर सा गीत रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने। सुने वालों, खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुसीबत मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए।

चाहे रो ना पाए उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम अनारी है सुनने वालों। जिंदगी में ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, दबाव है, चिंताएं हैं और हमसे नहीं संभल रहा है, ये सब हमसे संभल नहीं रहा है, तो ये सब उनको दो ना। ये सब टेंशन, तनाव, दबाव जो है ये सब उनको दो ना, जो जिसने हमें ज़िंदगी दी है वो जब पूरी दुनिया संभाल रहा है तो ये भी संभाल लेगा।

जी हाँ, ये मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने वालों कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ। फिल्म वक्त से निकल गया ये सुंदर सा गीत। जिंदगी पल पल बदलती है, ये तो सही है कि जिंदगी पल पल बदलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है।

जी हाँ, वक्त से दिन और रात, फिल्म वक्त से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। हम क्या कहें, हम तो बेशब्द हो जाते हैं। ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत में सभी बातें जो हमें जीवन में और आगे ले जा सकते हैं, अपना जीवन जो हम सुधार सकते हैं गीतों से, हम सुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, जी हाँ मेरे सुनने वालों, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। जी हाँ, रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आंखों के पानी बनकर।

चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस हंस बेटा, हंस और हंस और हंस।

जी हाँ, जाने मन कहलाएगा हमको टाइटल सॉन्ग सुनाई है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर दाजी ने। नीकंतिन अख्तन सीफन तक ये सुंदर सा पिक्चर है इसकी और फिल्म है। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, ये खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए।

रफ़ी साहब से हमने सुने फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत हमको सुना दे कि आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। अब वो तकदीर तो वो लिखते हैं पर बनाते हैं हम। जैसे हम कार्य करते हैं इस जीवन में वैसे ही हम अपना तकदीर बनाते हैं। फॉर द चे इमन पेन दूत फॉर द चे इमन पेन दूत पक ये अम फेल पपीर एंड फर क्रूकल ये हेत फॉर द चे इमन पेन दूत पक ये अम फेल पपीर एंड फर क्रूकल ये हेत गदान खुद probeer het vel nu glad te strijken. Dat is niet mogelijk, hè? Het hart van mensen is als dit vel papier. Als je het eenmaal gekwetst hebt, is het onwaarschijnlijk dat het weer zo wordt als daarvoor. Daarom, voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na. Voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na over wat je doet.

का घर से सुनाई हमको किशोरदा जी ने कि ये जीवन है। हाँ सुनने वालों, यही तो है जीवन। कुछ अच्छे बातें हैं, ये है कि माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। और ये एक बात भी है कि चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, साहेब चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता।

फिल्म अलग अलग से निकाला गया है द नाइटिंगेल लता जी के आवाज़ में। जीवन की यही है कहानी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान यानी कि कैनस, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन के तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। और एक बात और है, ये कि कलयुग है, कलयुग है साहेब, यहाँ झूठ का स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है।

फिल्म इम्तहान से सुना दी हमको किशोरदा जी ने कि हो रही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। मैं भी कहती हूँ सुनने वालों की रुक जाना नहीं तू कभी हार के। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं, खुद अच्छे रहो दूसरों को अपने आप दिख जाएगी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के ये गीत से मुझे ये दो शब्द भी याद आ जाता है कि चलने का नाम है जिंदगी और रुकने का नाम है मौत। जैसे बहता पानी में सूरत ऑफ अनवेशक रहते हैं और उसको जो हम इस्तेमाल करें भी तो हमारे जीवन के भी उन्नति, हमारे शरीर के भी उन्नति मिलते हैं। और जो तालाब में रहते हैं जो पानी जो नहीं बहते उसमें तो गंदगी आ जाता है, इसलिए ये दो चीज़ मुझे जीवन में बहुत अच्छा लगा और ये मेरी जीवन की एक सहारा बनी। जो आज मैं हूँ तो अच्छा लगता है, सोचती हूँ कहाँ यहाँ से आपको हम भी बतलाते हैं कि चलने का नाम है ज़िंदगी और रुकने का नाम मौत है। तो रुकना नहीं है बल्कि हमें आगे बढ़ना है।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के, ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है, वो आपके

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छा करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर, अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें जरूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें, अपना जीवन जो है सफल बनाए। भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान, जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना, तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारी, सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हर नया दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियां अवश्य लाए।

ये सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं, और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना, आगे वाला दिन बे शाम होंगे, रात होंगे, ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Zijn tegen uw medemens en niet alleen tegen uw medemens, maar lief zijn tegen alles. Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad, lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben, dat we die kunnen inademen om ons aan de stap te zetten. Aur kehta hai ki jiska jaisa charitra hota hai na, uska waisa hi mitra hota hai. Shuddhata hoti hai vicharon mein, aadmi tab pavitra hota hai. नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नए, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नए और नजर कर दे।

सोलफुल सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे।

दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

शिव मेरे है और मैं शिव का हूँ। ये दो तीन लाइन अच्छे है, इसे हम सुने कि फूल दोबारा कभी नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजार के मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्त, पर हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता।

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

पति पप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चून हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

प्रयागराज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर ली है। जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है? जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानि कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। ऐसे ही एक लोग ही होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ हाँ

Hari Keshav, Hari Mukunda, Hari Narayana, Hari Noam had blithed an moy bhajan. Kehta hai ki jo chich galat hai, wo galat hai. चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर दूर बन जाओ। और ये भी बहुत सुंदर लाइन है, सत्य वचन है दोस्त, कि ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। सुनिए, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए।

0: The Serving of Jenny.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानूं या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आँखों को, आँखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एन खान, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रैंक अलेमा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ओक नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाख दुच, इस दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड रोग का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते

0: अक्षय महोदय,
1: आवारा हूँ आवारा हूँ, आपके लिए पेश किया गया है उस बेगिस्तान से, और ये गाया गया है हवस गुरु ही से। ये दिवस आपको, आप सभी को

0: स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया जाता है यो चुन चुन कर और आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। आपसे बता दे ऐसे कौन सी फ्रूट, कौन से ऐसे फल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हम आपसे बता दे बनान, बनान ओम स्वक्त फरमेदन फत फरवेदरन। बनान केला, केला यानी कि बनान खाने से आपके जो स्वक है थे वो फरवेदर हो जाए। बनान ओम स्वक्त फरवेद पपाया, पपाया तर फरबेदरिंग फानेट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल, पपाया तर फरबेदरिंग फानेट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल। मांगो, मांगो जिसे हम कहते हैं आम, मांगो ओम द इम्यूनिटेट फरस्टर्कन।
1: गेअवांसेर्ड हुआवेन
0: आन अनानास, अनानास हाँ अनानास जिसे हम भी कहते हैं अजनास। अनानास देखन केल प्रॉब्लेमन। खरानात आपल, खरानात आपल यानी कि अनार, अनार गेफत लिखाम क्रख्त। ड्रुइवन, ड्रुइवन ओम लेवर प्रॉब्लेमन ते कालमेरन। वर्तलन फॉर हेट गेज़िख्त वर्मोगन। टोमाट यानी कि टोमाटी जिसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ टोमाट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल। सिनासापल, परसीना जिसे हम कहते हैं सिनासापल बै अन विटामिन सी टकोर्ट। सिट्रून, सिट्रून, सिट्रून फॉर गेविख्त वर्लिस एन ओनगिफ्टिंग। वाटरमेलन, वाटरमेलन जिसे हम भी कहते हैं वतरामून, वतरामून यानी कि वाटरमेलन ओम हेड लेखाम

जिराफा जिसे हम कहते हैं अमरूद। जी हाँ, अमरूद रेखत डायबिटीज। कीवी फॉर अन

पर समझदारी से। ये ना कह देना कि रेडियो पे आप सुने हैं तो ऐसा ही करना चाहिए, नहीं नहीं, अपना दिमाग जो है ना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए आप

यहाँ से एक घंटा के लिए रामदेव चैतू स्पेशल प्रोग्राम पेश होगा, हो रहा है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने रामदेव चैतू खबर अनुप नहीं तीन दिसंबर नहीं तीन ट्वीर तक en overleden in Rotterdam 6 juni 1994. Was een Surinaams zanger en harmoniumspeler. Hij is de mogelijke eerste Surinaamse zanger die een album in de muziekstijl buiten Ghana uitbracht en de eerste Hindustaanse zanger uit Suriname die doorbrak in het Caraïbisch gebied.

किसे कहूं और किसे कहूं मैं भाला, आ खराब किसे कहूं और किसे कहूं मैं अच्छा, तीर किसे कहूं और किसे कहूं मैं भाला। तो ही बता जब दो दिल से दिल मिलता है तो दोनों दिल पुकार।

0: हाँ, ये एक रिलीजियस गीत है जो रामदेव चैतू अपने आवाज़ में यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुना रहा है कि भूल बिसर मत जाना कन्हैया, हमारे गलियों में आना। रामदेव चैतू जी हाथ अन अल्कोहल प्रॉब्लम जी, बहुत गड़बड़। रामदेव चैतू जी हाथ अन अल्कोहल प्रॉब्लम एंड ओवरलेट इन रोटरडम En overleed in Rotterdam in de avond van 6 juni 1994. Ja, hij overleed aan een hartaanval terwijl hij sliep. En hij was 51 jaar. 51 jaar. En op 51-jarige leeftijd overleed hij op 6 juni 1994.
1: चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, सया नहीं।

चिट्ठियाँ लिखत लिखत जो हमारे पीढ़ी सुनते हैं ना, और हमारे आने वाला पीढ़ी भी सुनेगा तो सोचेगा चिट्ठियाँ लिखत लिखत, क्योंकि आज के दौर तो डिजिटल हो चला है, फिर भी ये गीत में वो संस्कृत, वो हिस्टोरी इसमें हमको याद दिलाता है। मैंने रामदेव चैतु है ले तीन ताल म्यूजिक स्टकन ना एंड है हिंग द खस्किदनेस इन अस इन फॉर द पिलारन अंडर द इंडो कराइबिस म्यूजिक। यू हैव दैट खुद को होर्ट या मैंने लिफ मेंस है ले तीन ताल म्यूजिक स्टकन ना एंड है हिंग द खस्किदनेस इन अस इन फॉर द पिलारन onder de Indo-Caraïbisch muziek zijn album King of Suriname. Zijn album King of Suriname in 1958 uitgebracht en het album Let's Sing and Dance. Ja, zijn album King of Suriname en Let's Sing and Dance. Let's Sing and Dance in 1968 uitgebracht. Van de Surinaamse zanger Draupadi bleven tot het eind van

वाकई में जगन्नाथपुरी में ठाकुर है बिराजे। मेरे प्यारे सुनने वालों, जो रेला मैं सुनती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है वो बीते दिन सुरीनाम में ऐसे गीत में जो रेला आता था और उसमें नचनिया जो हम जानते हैं ना, नचनिया एकदम से एक्ट दिखा फोन 100% फंसें डांस क्वालिटी एंड दैट वाज ओक प्रachtig प्रachtig प्रachtig ओम टू सीन। बैठक गाना मैंने लिफा मैंसे इज अन म्यूजिक स्टाइल दी ओर्सप्रोंकलक उस सुरीनाम कॉम। Ja, Baitak Gana is een muziekstijl die oorspronkelijk uit Suriname komt. Het is toch bijzonder ook een in het ID te hebben. Afkomstig van de Hindustaanse gemeenschap. Het is een mix van Hindustaanse volksliederen met andere Caraïbisch invloeden. De stijl is nauw verwant met chutneymuziek. Die zijn oorsprong vindt in Trinidad en Tobago.

ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर

0: संया धुन होए पिया धुन होए अब नहीं अरवा ना भावे।
1: सैया सैया धुन होए पिया पिया धुन होए अब नहीं हरे।

जाओ तो हम हैं दौलत के घर। पैसा जहान में तो नुकसान नगीन है, पैसा नहीं तो आदमी चोरी के तीन है। खनछनाटन पे सारी दुनिया दो।

फलक दिखा के काहे उनसे आजा। हाथ पकड़ के सैया जब तेरा मुखड़ा खोल।

झुक झुक करे सलाम। जिसका जेब है खाली उसका दुनिया में क्या काम।

Melody of Ramdev Chaitu. स्पेशल स्पेशल पेश किया गया है श्रीमान उस्ताद रामदेव चैतू के याद में। आपका फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से

गल है दिल दीवाना बिन सजना के समझे ना, उसके बाद ये है ऐसे ना मुझे तुम देखो रेगिस्तान।

सागर पनिया के गैले दोनों जने ना, आपसे बता दे मेरे प्यारे सुनने वालों कि बैठक का गाना स्टाइल, उनमें गला और कला जो है एकदम अलग स्टाइल का है। इसका बराबरी हमारे सुरिनाम के गायक के छोड़ के मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैठक गाना के गला जो है और स्टाइल जो है बिल्कुल अलहदा है। हमारा बॉलीवुड सांगर्स जो है, हाँ, इसे बहुत मेहनत करना करेंगे तो जाकर कहूँ से उतार पाएगा, मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो है अपना गला ख़राब कर देगा, पर ये स्टाइल, बैठक गाना का स्टाइल के गला जो है, लाजवाब है, लाजवाब है।

0: अनुराधा और उदित नारायण के गाए हुए गीत यहाँ से हम सुने रेगी म्यूजिक में, रेगी स्टाइल में, कि चाहा है और चाहेंगे तुझे हरदम।
1: कभी कभी बोर्डिंग गेट पे कुछ लोग सबसे पहले प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा देर तक अपनी सीट पर इंतजार भी वही करते हैं, और कुछ लोग आखिर में बोर्ड करते हैं फिर भी मंजिल पर सबके साथ ही उतरते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप थोड़ा देर से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हैं, और सबसे पहले पहुंच जाना भी कामयाबी की जमानत नहीं होती। असल बात यह नहीं कि सफर का आगाज किस नंबर पर हुआ, असल बात यह है कि आप इस सफर को किस हौसले, किस सब्र और किस नियत के साथ तय करते हैं। आखिर में मंजिल सबको एक ही सच सिखा देती है कि वक्त और तरतीब से ज्यादा इंसान का सफर ही उसकी असली पहचान होता है। कभी कभी बोर्डिंग गेट पे

0: या बेलना इज जस्ट द पावरफुल थिंग, आपने ठीक सुना, आप ठीक सुना, बेलना बेलना बेलना क्या करा देते हैं। हाँ हाँ और कहते हैं
1: दोस्त वो नहीं जो हर रोज मिलते हैं, दोस्त तो वो हैं जो दूर रहकर भी दिलों में खिलते हैं। माना कि जिंदगी के रास्तों में दूरियां हैं बहुत, पर सच्चे दोस्त हमेशा ख्यालों में साथ चलते हैं। दोस्त हर रोज मिलते हैं, दोस्त
0: हाँ दोस्त वो नहीं जो रोज मिलते हैं, पर दोस्त वो भी होता है जो दूर रहकर भी दिल के करीब रहते हैं। तो कितना अच्छा भी बात है ये ना।

3:30 हो चला है, 3:30 हो चला है, शनिवार के हाँ दोपहर का कार्यक्रम यहाँ से हम सुन रहे हैं। और आज फिर ईयरली हो चला है, सातवां महीना चल रहा है, ये साल का सातवां महीना चल रहा है इस साल का। जो हमारे देश में आए हुए हैं उनको हार्दिक से स्वागत किया जाता है, जो यात्रा पे जा रहे हैं आपका यात्रा भी सफल होवे। और हमारे संसार में जो नए नए व्यक्ति जन्म ली है उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है, और जो शरीर छोड़ गए हैं उनको सुख सहानी भी प्रकट है, और परिवार में भी हेल्थ स्तरक्त व्यंस किया जाता है। यही कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो जैसे भी हो जरूर से कोशिश करना खुशहाल में रहना, क्योंकि खुशी रहना ये आपके बस में है, दुखी रहना ये भी आपके बस में है। अपना सोच अपना नज़रिया बदलो, बस अब तो ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारा पीठ पाछे बुराई करते हैं बस उसी का स्थान वही है, पीछे रहना उनको पीछे छोड़ देना और आगे आप अपना कदम बढ़ाते रहना। आज आपको जो लोग हंसते हैं कल आप ही को वाह वाह करेंगे, आप ही के बगल में आकर खड़े होना चाहेंगे, तो आप जरूर से वही मुकाम पहुंचना

Soul Suriname, Mr. All Right, sì. Oh, mere dil ke chain. तस्वीर बनाता हूँ और नहीं बनता है तस्वीर बनाता हूँ। राजेश शिवनंदन जी की आवाज़ में।

बदलू के आवाज में सुने हमने कि भीगा भीगा प्यार का समा, दुख हो या सुख मैन एलिफमेंस, दुख हो या सुख वो अपना ही सोचे है। जो भी है जीवन में सीखना है जीने के लिए, बीता कल बदल नहीं सकते, बीता कल बदल नहीं सकते, और आने वाला पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैसे होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे प्यार की

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम राजू फाहन सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

आंख को हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी जमजान की ओर, और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर, हम चलते हैं हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर सा नाम है खोदे भाई, ना खाली जुका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियान या दूसरा जात या आयम गोल खोले, चिनुआ सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया। तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिख लेके आयल है सोरखन हो परे, सोरखन हो फ्लिक फेल पे उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आय के, यानी कि उतरल है सोरखन हो फ्लिक फेल परमारिबो में बेनलान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिव खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिक लेके आयल लोग सोरखन हो पे 4.5 किलो रिव खोद में से बेनलान से आयल है। और बात में उस सब एगो त्योता फिट्स में बैठले घरे जाई के भैया, अब घरे जात रहा भैया। रास्ता में एगो त्योता आलियोन आयले जेमा 3 गो लुटेरा रहा वापन ले के भैया कटली से ले के, और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गे है रिहती खोमपर स्त्रांत में। तो पारामारी भूमि का रास्ता का नाम खोमपर स्त्रांत हुआ पे लेके भगल है भैया, 2.5 किलो सोना ले के भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भैल है तो सिपाही खोजबीन करे है कि के सोनवा ली से भैया, यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भाग्य भाई। तो बोले नारे ऊपर फालखिंग से नारे दे खोम पर स्त्रांत अनखिफ्त भैल है, ऑफस्पोरिंग अनहोडिंग बेना भैल है, खाली ऑफस्पोरिंग भैल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताए, लेकिन तुई है ना हल्फ की नो सोना रू बारा ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारा प्रोग्राम में, जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे हम चलते भैया, एक औरत के समय लाश ले पाई से भैया रवि, और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में, और एक औरत के लाइक मिलल है और वो गंधात रहा लाइक हुआ भैया। गंधात रहा मतलब कि उन बिन्निंग हुई रहा, कई रोज से मारा पड़ा रहा हुआ पे। तो जो हुआ सब गैल है, तो पाई से ई औरत के बिना कपड़ा के भाई नंग ढिड़ंग औरत हुआ पे पाई से। और बतावे फोकस इसते इन्फॉर्मेशन बोले, एगो आदमी है अब सुख ना क्रैदन उगैल रहा तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर जुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रैदमान, तो ये क्रैदा गैला अपन जंगल में खोजे तब ये लाइक हुआ पाई से। और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो, और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लग दैट इज मिस ड्राइव इन दिस मोर्ट स्पेल। बोले तर प्लाट से वेरे लीफन लोग से लेखा फन फ्रो आन खत्रोफन, और बताई गई हैगा दी इन हु वेरे है बतरोकन इस बाई दिस साक वर्ड ना ऑन द सोख। अब सिपाही खोजबीन करे कि कौन के मारी से भैया, बताए फ्रो में तो लिखते हैच क्लियर एन खलात हार, तो ई जुका ना भैया तो इंगी हुई नहीं का बोले ब्रासिलियान हुई कोई हुई, बतावे लिखते है क्लियर एर खलात हार इन दिस साक के फलास नो हिन ऑफिशियल फॉर्मेशन आनगिफ्ट खदान। तो कर मतलब उ जुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलिनी हुई बा बोले चिकन बार है। तो ऐसे बातचीत हो रहा है हमारी जनता, जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है, ओएम भैया ओएम जो है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आठ बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है औतियार रहा तो एगो द्रियन त्वेंतक यारख मामशेला ते ओकर नाम रहा तो और बोले हैगा एगो आठ बरिश के लड़का के को स्टीवसोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और ये भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में तो ये लड़कवा के आठ बरिश के औरतिया भोंक के मार ढारे रहा वारा अखेंदे ने वो उनका मन लीफल उसे लिखा फा ये दिन आन खतरोफन और बोले है लाख ऑफ्रॉन इन प्लस ब्लूथ एंड फरतूंदे खीन टेकन फा लीफन लड़कवा आठ बरिश के मर गए रहा तो आप लोग के शायद याद हुई एकर बारे में आप लोग को हम न्यूज में बताए रही और आज ओके यानी कि अब ओके फोर्दर यानी कि अब ओके स्ट्राफ मिले औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले औरतिया के अब बोलियो कि कितना दिन के जहलिया ई पाई से आठ बरिश के लड़का के ई और झका बोले हैगा एकर बारे में बड़ा अपहेफ हो गया रहा सूरीनाम देश में दोस्तों तो ई औरतिया के स्टीव मुदर हैगा स्टीव मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के अप एस करे से जहल पुराना साल 2025 में ई 8 बरिस के लड़कवा के मार ढाड़े रा छोड़ी भोग के फोलखस एट ओएम वास एट दी आफन हेफक ऋषि ओस्तान टेशन द फादर फनेसला तो फॉर और बताए गए हैं अपाउ एंड दिस फ्रेंड देन माशेला आदमी एक नाम रा अपाउ और एक वाक नाम रा माशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खनित दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के आठ बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फोटूब देखे ला इतना मोही लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगी ही आदमी कुत्ता बिलार पोस ले वे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस ले भाए और जाए के आठ बरिस के लड़का के पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सो स्टीव Soon raha verklaring van de vader bleek dat de haven aanvankelijk respectfully maar de sfeer omsloeg nadat zijn vriendin zich eraan stoorde dat hij alcohol aannam van een buurman. Bole Auratia, bole tu Adamiak, bole tu kahegele buurman ke daar roepiele wat er daarna ontstond een woordenwisseling. Bole de verdachte ging volgens de woning binnen en sloot zich op. Getuigen verklaarde ki Auratia vernieling aanrichtte in de woning en een mes uit de keuken. Pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen het ja, jagra kalera, ki okar anamia gela, buurman lage daarupie, or aard bedischke lardka ke jaike, jan se maar deze. Lardkwa yoratiak naraha, u lardkwa raha voor andere huwelijk. Met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen. Bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens een medische was er geen sprake meer. Ja, toen Ibari Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पीपा कल्ले से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है आठ बरिश के लड़का के ओएम एस दर्तक यास टेकन टेकन स्टीव मुदर फॉन दोस्त टेकन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के आठ बरिश के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है तो रोबी गयादीन के साथ है सीफ बी से चित्रा उतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी बहुत प्यार यहाँ से देते हैं तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिस ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती
रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पुलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथे साथ दुर्योक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले योगदन सफाना में Tijdens de controle van een voertuig trof een agent in de dashboardkastje een transparante plastic zak aan met een substantie die op marihuana leek. Ja, op een 30-jarige bestuurder heb ik gezegd, op een bijrijder heb ik gezegd, ja, geweer middel, kolf zaten, scherpe patronen, op een ECT heb ik gezegd, ja, het hier over, ja, op een ECT heb ik gezegd, ja, PK heb ik gezegd, ja, AOM waarschuwt, cultuur op traditie is nooit excuses voor seks met minderjarigen. Deko bhaiya minderjarig bole cultuur to jane saban bole hamar cultuur me hega ke minderjarig ke sange trou kar sakel to jane benaland pe chota chota ladki ke saban byah kar dewe ya admi ho ya ladka le le to lunju ka ke ladkan ko jano hai to aise baat hai baki bhiya om ka bole hega upambar minister ka bole hega tu chahe jon jat ke baate chahe jahan jon cultuur ke baate mo bole vet me minderjarig ke sange to ke seks ना चाहिए करके तो ये बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते हैं इतना दिन बाद आइए हमारे प्रोग्राम में साथ ही साथ फनेसा दोस फनेसा भी आ गया है फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारे हो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को तो देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना दुर्कलक बोले कुलत्री ट्रेडिशन में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करके द बूस का फॉलक ना आनलेडिंग फॉर अन रिसेंट स्ट्रफसाक एंड इट फॉरऑल करेक्ट ऑफ द बस्केमर फॉर मेंदर यारखन ओएम बोले है culturele gebruiken, traditionele en traditionele overtuigingen om familieafspraken nooit worden gebruikt als rechtvaardige voor seksuele misbruik of andere strafbare feiten. Tegen toen jij nega, deze banka bolle hega, bolle palwar bolle, betiwa ke biak kardi, je betiwa ke biak kardi, tu minder jarig baate, mak niet. O bolle, betaave hier, o hem bolle, usap excuses na hè, ongeacht de achtergrond van de betrokkingen, bolle tu jij John baate, bolle wetboek bolle hè. सबके कानून एक है सेक्सुअल हैंडलिंग वार बे स्प्राक इज फन बिनन ड्रिंगर फन इट लिखाम बे एन किंड यंगर दन 12 यार कुनन लेडन टू द गेवंगनिस स्ट्राफ आन मैक्सिमल 15 बरिस के 12 बरिस लड़की से और काबले तू सेक्स के लिए 12 बरिस लड़की के नीचे ते तो के मिनिमल 15 बरिस के जहल हुई से के भैया लोन सुरीनाम देश में तो याद करियो सुरीनाम के वे थे तो हमारे देखा जाए सुरीनाम से सुभाष भगो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो भाई सुभाष आपको यहां से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को तो भाई सुभाष आप तो सुरीनाम देश में हैं तो वहां कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जे तू झुका बाटो तो तुके मेंदर यार के संगे माखेगा लड़का बनावे के सेक्स करे के ओएम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग buiten een huwelijk met iemand van 12 jaar of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Oude zorabar is een nietje via binnen te hinkereke. Daarom staat een maximale gevaar van barabariske. Oude bolle geldboete van vijfde categorie. Het OM aandrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bolle zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd, mensen. Bolle controleer na hoe bolle ze van tjoepe और कले वारफान उस स्ट्रफबार से बोले बिरकर्स ऑर्डर फैमिली लीडर गसाग ड्रागे से अंदर बर्ट्रोकने वर्डन opgeroepen सिग्नलन फ्रॉम सेक्सुअल मिसब्रेक रजिस्टर नेमे एंड मेल्डिंग टू मेक बाय द पुलिसी ऑफ बफुक्ते इंस्टेंसेस बोले तो मेल्ड करियो सिपाही में और की कोई अब देखो एगो यहां बताएगो रसेंट साग भले और लुंडा का नाम बा सनाईपी बीते हुए हफ्ता में बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलन से
मीडिया देखो ये ते इस सनाईपी के भैया कपड़ियां जहलिया में भरी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से ओणी का कर ले रहे को 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर 3 यारख में ही एक स्वांगर कर दे रहा ते एकर माई गेल हा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है बोले फिर 3 यारख बोले हम लोग संगे रही बोले हमार औरत है ओकर माई गे नालिश कर दी छोड़िया के तो बोले हैगा आपके देर तक यारे के फरलेंग भैले जहल में बा और बोले अनफरक्लार इन तेकनो पुलिस से मेजिस एंड फ्रॉ इज एंड दैट इज सिंस हर देर 3 देर लास में तारीफ और बताई गई है बोले 13 वर्ष के रह तब से हमें उसे रेलाची है और बोले हैगा बोले है द केनर खाफ अंदर द मेजिक 13-15 jaar en sommige van een binnen de cultuur als vrouw worden beschouwd. Bole tera bari 14-15 bole seven oké chota ladka ne is na dekhe ek aurat ne dekhe hai vooral wanneer de familie daarmee instemt dat botst echter met de nationale wet waarin iemand pas vanaf 18 jaar als volwassene wordt gezien. To pehle tulunjano bhaiya chota chota minder yarake ladki log ke se biya kar de wat raha to aap log isse bachaye kar rehna जो कोई नालिश करे भैया तो झुट्टे के जइयो 15 बरी जहल में बैठ को और फ्रुईती करियो गाना गइयो ते तो अच्छा बात ना है। हम लोग के श्रीनाम देश में इरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो इरमा श्रीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताए गए भैया। तो स्कूल में बड़ी बरैया गए ले भैया बड़ी बरैया गए ले वहाँ पे हाँ तो बरैया को मिलो स्कूल है ऊपर से 2 तारीख को एग्जाम रहा मिलो स्कूल में और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन एग्जाम अफलेखन बस्ता द फ्रीज दस स्लाख तो फॉर वार्डन फन देसर कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलाइजेशन एंड वार हेड बाय नेस्ट स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफडेलिंग बताए गए हैगा कमसरियात की करी से और बोले ना तो स्कूल बफिन से नाम उपमार बखराफ प्लास स्कूलिए के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरूत इस में हो गबोमन और बोले इवन इज इन द पन फन अखतरसाइड फन द स्कूल दिख्त बखरूत द स्कूल लीडिंग डू टन ड्रिंग बरूप तो बेरी पेन है और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है तो वही में से कहीं बरैया रहा और लाई के लड़कन के काटली से तो लंटी के चाहिं बेरी पेनों सफा करे कुआ इंददार भैया और हुआ के बेरी पेनों बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो और हुआ के बेरी पेन में स्वेरफर भी सूते भाई से परमारी बू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से और लेडिंग पे जइयो से बी के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहाँ हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है लंटी जा कुदीन बांध कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई में अंदर हो तो औरत नहीं तो वही समय बेरी पेर में जनावर घुस घुस बैठे वरफान में से वो भी तो अलमाल वो क्यों ने श्री नाम है नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बरुस अंदर सोम मैं वो क्यों ने तोक दरो फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास पे तो जइयो भैया तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लातोदार इलक से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगी बनावल इन चिकन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पे पियो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अफस्केट ले पियो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड तो बोले जो नहीं कम सुरीनाम नहीं फरकलाई के में नीदरलैंड ऑफ अंडरसोम मर मेंसे एक से वत द वारहेट इज और यहां पे श्री राम स्कूल के पीछे जंगल लगल है जहां इतना ढेर बड़का बड़का भूस है और बरैया जाए के स्कूल केंद्र के लड़कन के बड़ा छेदाई खींचे दी से वारफन हुआ पे एंड एग्जाम रहा मिलो स्कूल के
तो सा नाम के जो रखे रिंग है उस सबसे हम बोलेला तरी तुलुन तरी चिक्कन इक्कन करियो जहाँ लड़कन है चारों बगल चाहे सफा करे अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी ददमुत योरी जेल्फ खानदून रखे रिंग है पिकट ओवर मेंस मैया रखेरिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे है अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे है रखेरिंग में तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाए अब

पलवार धरे ई धरे उ धरे एक बारे में हम लोग के फोर्स जो ने देना के और अश्विन अधीन के नामो ही लगल है तो अश्विन अधीन एके बोले तो कबवाई से बस इतने में अने का बोले हैं गया दिन मतलब कि अधीन जो फोर्स इतर अश्विन अधीन है गादे ना के और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के बस जोगी बोले है उसे बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के बोले कि तू सोचे सो मान बोले रहा कि तू सबसे सलेक्ट दे ना फोर्स इतर बाटे तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया बोले तो कहीं यहाँ पे न उड़क तो अंतरिम कर दे इसे बोले नहीं तो माफी मांग तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन ची कह मांग बोले माफी तो के चाही मांगे के तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फरखान साल फलातन अब बोले फिर यहाँ पे फरवेट अधीन पार्टी दख बाऊ अब तो त्रिदन है ओपुसी ले ने बोले कि जब ओकर आदमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जब कुछ करे तब बोले ओके ना बोले और दो अब दसा के बोले लाल से खून प्रात अब बोले जब हम एगो बलंगा रेक पूछे तब बोले बेर बेर हमें काटे बेर बेर हमें काटे है अब बोले कि जो ने हम अब स्थान पाई ग्रुफो आई क्यों हमें निकाल के बहरे करे बोले वही चीज बोले जान बुझ के करी से जोगी स्टेल दन अधीन द फोर्स इट द स्टूल सो मुतर फरलातन आल से द पार्लियामेंट नीट ऑफ एन करेक्ट एंड ऑन पार्टीडिक वेज कैन लेडन दार भी बना दुक्त रहे द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफ्कस्लोटन एक बेन नो नहीं क्लार में दिसे साक तो ये बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बातचीत हुए है हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रह गए है विश्वास ना रह गए भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तलोन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया अब यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि इसी पहिया घूस लेवे है सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृक्ष के साकोक में तब मैवा गए है सिपहिया लगे बोले हमारे बेटुआ के तू छोड़ दे बोले तो के हम पैसा दे बे ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा दे बे तो ओके बोले है 2500 यूरो

Hadostel. Tok boleh alai hajar 2,500 euro. Boleh cahingga oke dewe ke ता ये औरतियाँ बिचारी अपन बिटवा के छोड़ावे खातीन 1,250 euro ओके दे से से मांगत दार 1,250 euro ओवर में द अस्प्राक दैट द रेस्टेरन बदराक सो वर्डन बताल सोद्रा हार सोन वाज फ्रेक हलाटन अस्प्राक राशि पया केम देख तो कम ओवर मक करेला 2,500 euro वा तो के देबे अने 2,500 वा हम तो के देबे मार जब बेटा हुआ छोड़ जाए तब बाकी ई बिरिखा देरवा बेटा हुआ के ना छोड़ आप छोड़ पाई से मालूम ना है काहे खातिर बाकी ना छोड़ पा होई सके ओकर ऊपर अदमीरा होई कुछ कारण ई ना छोड़ पाई से 2 तारीख जुली के अरे यानी कि इसको तो कुछ ना कर पाए बेटा हुआ के फॉर द रेक्टर चल गए हैक नखनेश फन देर तक दाखन इस फरलेंग अब मम्माई भैया बहुत तलियर खस्ताल तो गए तब इसको तो बोले जे तू हमारे बेटा हुआ के ना छोड़ा है पहले भैया हीरा तो हमारे 1,250 euro लौटाड और तू जाने हैं कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो हुई के अंते चल गए ओहो बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब

Pai weker kan je ook hem dan de besoede bara zo eroa. Bas die oude kakel bergen aan gifte kardis. Abe de kop ja chakalas. Ja aan gifte kardis heb hij bas die brika dirke. Ohi ke kolika pakarke bankardis. Oba doitarik jullie ke chalge oem me bhaiya chijua voor de rechter chalge he. Obole na de afsteng met de oem. Is hij in verzekering. Kastelte John Jahalia me brika. Ik had er een duister koei ke ban karat raha. Ab apare jai ke oma ban hai bhaiya. Dekho, ab tu ghoos lewe te bhai bataye sipahi lon hua bari banmasi kare hai. Jeke tu sochiyo Suriname des pe ki sipahi hamar badka kamarat hai. Hamar badka dost hai. Hame bas karam karega. Dekho, ohi sab kaun kaun dhanda hiya pe kare hai. To Gita ji bhi aa gaye hamar program mein. Aur yahan par jud gaya. आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई इतना रोवे है कि हम का बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुइया है तो बांची धो रहा ई औरत के बिचारी के और लई गए है एक आदमी पेंशन में तो जाने तो कहां पेंशन वन है भैया हीरा सूरीनाम देश के बांची धोवे है तो लई गए पेंशन में भैया और ई लड़कियां के लई गए औरतिया के और इना है कि बहरे के औरत है या कोईरा ओकर फ्रेंड रहा भैया कई बरिस से संगे यानी फेफ यार के उ सब के रिलेशन रहा फेफ यार रिलेशन रहा और लई के पेंशन में तो औरतिया के हुआ झगड़ा भइले त अनमिया औरतिया के बारे में संदलन करी से भैया पेंशन में परमारी बहु में और बताए गए हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा और बोले इन खतेत औरत क्या रोवत गले रिसेप्शन लगे और बोले हम में तो सिपाही है स्काकल कर तो सिपाही गए ले तर प्लेक बोले हैगा अरे फिर द फरट्रोकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ोड़ के खतेखर फ्रकला दे तेखन उब दे रक्षी बोले द फ्राउ आन खाफ की पांच बरी से मरे ले राची बा वा द आन लेनिंग फोड़ में सांदलिंग ना बताई सिपाही आवत आन हमें जेना दुनु में फिन सुम्मत हुई गे भाई वन दुनु फिन चल गे सिपाही कोई के ना पाई से लेकिन न्यूज में तो आएगी है दोस्तों ती बड़ी बड़ी दुख के माथे ये हैपन फॉर होल्डिंग विद ईमान यू होल्ड फॉर ईमान झगड़ा लड़ाई हुए है मैं इतना की ना तो कोई के में सांदलिंग कर और ई कोनो कोनो कोनो चाले भैया और मैं सांदल करिए पेंशन में अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बड़ुकिया क्वारंटाइन और गयाना के हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफोर्स खुद के मैनेजर है तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से हाँ

चलते हैं अपना समाचार। तो हम जाए भैया गायाना और क्वारंटाइन की ओर, हम जाए ला निकेरी के ओर भाई, निकेरी के ओर हम जाई है। तो आप लोग जानो है चांद संतुखी मांगत रहा बुड़की बनावे और बुड़की मांगता बनावे निकेरी से लेकर गायाना में। बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई ब्रुके, लेकिन रखेरिंग लोन जो रहा बहुत क्लाख करता कि संतोखी मांगे ब्रुकी बनावे, मांगे ब्रुकी बनावे, बोले रास्ता बना ये बना बाकी। अब इस सिमोन्स और एनडीपी रखेरिंग एनपीएस रखेरिंग जल से तो सब बोले है ब्रुकिया चाहे दोरो बने के, बोले ब्रुकिया हम लोग के चाहे बनावे के। तो अब बात ये चीज भले सिमोन्स गैल है और कहा बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि ब्रुकिया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के।

तो अब का भेल है चिनुआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर है गा ओवी दया नाम का बोले है मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया बोले गयाना ना बोले फ्लोरिडा बोले हम नून बड़ा कोई सरनाम के आदमी बनाई बोले हम लोग गयाना से पैसा बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे ई बात बोले है चिनवा ओवे के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में बोले हम लोग अपने बनावे बोले अपने तौल धरबत एकर बारे में इरफान अली जो है इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली तो वो बमकल की ई कौन भाषा है वहाँ पे असेंबली में समय बतिया है बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जोन है गयाना के बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना बोले ई जौन मांगे बोले दे बोले हमसे अस्परा के प्रेसिडेंट से सरनाम के और वो हैगा सिमोन से और बोले हम लोग के अस्परा के संघे बनावे हम लोग तब तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है बोले ब्रुक्किया चाहे खसामलक बनावे हम लोग के तो असेंबली बकेन करे बोले फ्लोरिडा हम लोग के मेडल से बहु हुई तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोक किया बनावे बोले बोशे ब्रोक के तुलो परे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सबर खाई पी के बनाई बोले हूँ मांगे पैसुआ बनावे का की मांगे अकेल बनावे वजह चिनुआ आधा पैसा मजे गया ना जा आधा दे पैसुआ तब तो तुस लखवाना बनाई पाइये यहू बतिया है तू सलखवा ना बनाई पाइये तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रोक किया बनावे सलाख मांगे बनावे का तो गयाना के रखेरिंग बोले है का बोले हम उस तांतमेंट हौद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रोक की गयाना से बोले हम लोग मिल के बनावे बोले परमारी बिहिफ ऑन फंगन ओफर मोगल का कूट्स वे सकिंग ओन दंस द बरिक्त इन सुरिनाम द बरिक फॉलीडिक सेल्फ विल फिनाशियरन एन बसितन बोलो से मांगे अपने बसित करे अपने मांगे फिनाशियर करे और बोले है संग ही फिर खियाना तोर फ्रागन गलेद ओमदात द ब्रुक tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obolehega Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. तो एक बारे में जैसे जैसे रही हम बतावे बोले है जेनिफर सिमोन ही वखरी पंदर सुरिनाम बेशक वास डील फॉर बस्तांद यूरिडिस कादर अफ्तरोंद तरवल गयाना से एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरबरेनिंग आल हाथ अफ्रोंद और सुरिनाम में कहा भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक से हुए है वहाँ पे एक गो कम करते हैं एक गो आदमी डेवलो तीन तीन गो सलारस है कितना आदमी बैतलांत में है और ओकर सलारस एक भाव है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ना जाने है कि रमिया कहाँ है काम पे आवे कि ना आवे है तो एक बारे में और कहा बोले है मिनिस्टर फम्बे ने लांस झाक कहेगा और मनीरस फम्बे ही बोले है कि तो कह चुगली करे के बोले चुगली वाला चुगल खरवन के बोले है रोहित चुगल खरवन के बोले हमें तू बैल करके बताइए कि कौन अनमियन दुई गो तीन गो पावे है का बोले है सलारस बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले हमें बताइए गो एनोनिमल लाइस धरी से टेलीफोन नंबर बोले चुगल खरवन बोले बताइए मत तू जाने भैया चुगल खोर बड़ा ढेर दुनिया में ना अपने खाइन दो दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया तो बोले बताइयो तो ऐसे बतिया है अब देखो ब्रुकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रुकी रे भैया छोटा ब्रुकी ना है अति से ब्रुक फन 3.1 किलोमीटर मुड फॉर आउट द फियर फॉर बीइंग टू सोड्रेन एंड सुरिनाम इन मोलिसोन क्रीक इन गयाना फरफांगन यहाँ बताए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क हसीन अल बलानाई के फोर हैंडल टूरिस्म रुखियाल रीजनल फॉरबिंडिंग जिसन फ्रांस गुयाना एंड ब्राजील के बारे में भी है गया दोस्तों तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम ओली ब्रुकिया के बारे में बता दें वन केरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के न गैल है दागे इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकार के फेंक दे रहा दोस्तों माइक बैनर अलवेर तो
सिपाही भैया ना गए ले चोर के दागे अपरे के दाग ले। भैया सुरनाम के सिपाही के बात बतियाई ला हमार जनता। बोले जानी ये मुदीनी में से नहीं लख है, हम नु सब के ना इट लख करी भैया जैसे समाचार तो बताई ला। तो बताओ गए 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपन पिस्तौल से अपरे आप के दाग ले से फरकलाद दथा सुन दौड़ नारकोटिका ब्रिगाड वास आर कहो द नादा थे में ड्रग्स इंसर बसी था। सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका ब्रिगाड जो ड्रग्स के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से। बोले द फ्रॉ सोफिया फिया हैबर फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेय फुटन सोदन वार्डन इन क्रिस्टल असे 2500 यूरो अन पॉलिसी बताल द ना। तो ई है एकवा भैया का बोले है पैसवा वाला, लेकिन जो सिपहिया अपने आपके दाग इसो के है इसल खवेल तरा भाए और जाए के दाग ली से अपने के। तो दोस्तों और आगे को हम जाना चाहते हैं और ये बात है आदमी बड़ा जोर कसीनो जाए सुरीनाम में भाई। हाँ कैसीनो में भैया तो एक आदमी गए ले कैसीनो में बड़ी ढेर पैसा लेके भैया एक ताज पैसा लेके गए ले कैसीनो में। और जो गए ले कैसीनो में उतना ढेर पैसा लेके बस कोनो कर तस्वे मार दी भैया तासन में खरोट खल बराखन खस्तूलन फन कलांतन इन द कैसीनो। अरे कैमरा है माँ भाई, कैमरा में चाहिए पे को दरियन दर तक यार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले ओकर तास जेमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा। बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रैट में बोले हुआ से सबन चुराले से बोले जेमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा। बोले हम खाली तसवा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट। अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तुके लगल हैगा टॉयलेट तो तू अपन तास छोड़िए तो उ तसवा जे छोड़ी बस दूसर कोई मार दे इसे चिनवा तू गधा बाटे। कैमरा बेल ब्लैक दतन मान द टास ऑप्शन स्कोट हाथ एंड दे इज अ टेजस दे लाम रुलेट ऑफ द ग्राउंड लीड फॉलन एन अंडर बसुक द अख्तर हेमस्टोन हिव द टास मेस इन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर वर्फोल्क्स मी वंदोर गगान। Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum. Ik er waren met khojmin kare de chinwa kal bane raha aur bole palwan na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya to yahan bataye gaye hai dar bhai 5000 SD bait gemaakt batawe hai ga afgelopen manger ke aangifte bhil hai dit keer werd een klant in de casino een 5000 SD bait gemaakt. Ook dit onderzoek is een handig dus doe je dan chori hoi chukal bhaiya bite hafta mein hua pe 50,000 SRD bhi chori hoi gaya raha। To ye hai hamare bhan janta hum sochi aap log ko ek geet hum suna di abhi ek ko gana na sunai li hai aur kon gana sunaye go chatni hum jaas।

दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा अभी शायद, और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और तो अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो का बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पेयल फ्राक्सी फोर्स से फ्राक्सी लाइदर रहा, तो ये आदमी फिर यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल आए, अब फिर यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले, अब एक कहा बोले स्टार्स बस्कुल हिंग में मिलल है मुतर बेरे ओएम खान, अब बरोन तो का करे भैया अंदाज बहुत रख करे हैं, एगो लेस लेफर करे से दे आना के जेमा 200 नाम है स्टिक थिंग के, और बोली से कि जेमा इन दिन द नेशनल बोले पेयर बवेर द एयर द दैट वाज स्ट्यूस इन होप फॉर स्ट्यूस लीडर फन ऑफ ही हैप्पी दिस इज द फोर रखिए प्रयोग द फिया स्टिक थिंग इन दसन को जगह ले से, और बोले खाली 1000 डाला भरी से, बोले अब कौन ची हुए ना न्यूनजीर दे है सेन एर्डर आइसब्रक इंस्टेल दैट है द क्रोम कॉन्फ्रेंसी दो नंबर पाल पार्टे वेर गब्रेक ऑन विट वासन टू फैसिलिटेटन फॉल्स द पॉलिटिकस हाट हेड ओम एस्ट दोशी एंड साल स्टेप फॉर स्टेप बोलेगा सब तो के बतावे, और एकर बारे में जब मिनिस्टर सेफान खरोन बलाइट के पूछी से तब बोले अब कुछ ना हैगा जो सब के भवाई से एक ब्लेफ एरबेड क्रोम कॉन्फ्रेंसी दो पार्टे वेर गब्रेक विट वासन फॉर फैसिलिटेट, और बोले है एकर बारे में फिर यहाँ पे फ्रक्सी ले इधर आशीष कुमार गए अधीन बोले हैं, बोले ये बहुत एरस्त का साक है जो समो हर जो आन हाल दर खरोन को फिर से दूर बपाल पड़ते ही वेर खबर है फॉर द वेट वासन वाली दो इलेक बोले फिर यहाँ पे के आदमी खाली जगह ले से एक कर बारे में दे या ना फोर सीटर अश्विन अनभीन बोले क्वालक दत है सोन इस प्राक में से हमर ही फलातन पसीरन, अब बोले इतना बड़का बस्के उल्लेख करी कि फिर यहाँ पे लोन ऐसे करी से, अब बोले अश्विन अधीन बोले कुछ ना बोली से बाकी जोगी ये को चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन ईयर लक में से एक कर बारे मिनिस्ट्री स्टैनली सुरो पावीरो जोन खरोन खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिक थिंग एंड वार ओवर सम हार जो है थी नो ऑन द सोख मुतन वार्डन बोले बेचाही सब ऑन द सुख होवे के, अब बोले लाइक के एज लेजर दिस वही के आदमी अन खसीन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो सेने का फॉलोवर बे कॉन्फ्रेंसी heeft plaats gevonden terwijl er rechtszaken gaande waren, dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. Toen je baant hij zo'n harde kebetwa, Bronto bhaiya, Bronto zit onder vier mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer, want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje le bhaiya, kuketra paisa, fraudeer kadisega. Dus dat zijn de zaken, deko bhaiya, tulun jano Suriname, je stroom ke paisa na bharie, de kate me kelwaar na kare bhaiya, aai ke काट दे बाकी द खरोस्ट वन बतालर इज द ओवर हेट इन सुरीनाम जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आशा जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आई के काट ना देवे है बोले हम लोग काट स्ट्रोम है ना पे बाकी यहाँ बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईबीएस के स्ट्रोम खबर है क्योंकि पैसे ना भरे सेफ कोमा फेफ फिर तक मिलियन एसर दी अख्तर स्थान थेगा ओवर हेट ईबीएस के भाई इस द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर, और बोले एक बारे में अन मिनिस्टर अन बोले है इंटरिम फन नतुलक हिलब्रोनन बताई गई है बोले है गांड वेट स्टार्स बखरूटिंग तो जैसे सेशन 20 में कर बारे में वित्त लाई से कि एबीएस इन मेडल 745 मिलियन बोले है ना पैसे फॉल्कस हुर बद्राग द अक्सर स्थान बे द एबीएस, और बोले हुर बनादर के दार ओवरहेड alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betalingsachterstand weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de plichting. De Oesap bolehe otra paisa, bolehe na paise.
EBS भैया और जो तू वहाँ पे 10 रुपया ना भरिए तो आए के बरौन पे आएंगे लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे और ऑफर है कि सिर्फ 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है तो ये बात है। तो हमारा बहन मून नारायण भी आ गया है और वो है पथवानिका से दोस्तों, तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। तो हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए तो लोग जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 तारीख जनवरी का अमेरिका वही घर में मचे पकड़ ले गया रहा तो लोग जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बवंडल चल रहेगा और बेफिंग रहेगा, बहुत ढेर आदमी मर गए हैं, हेल्प खोजे हैं और हम मदुरा खाली मांगे वहाँ पे निकले अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रक्षाक बोली सेगा बोले अब तू पैसा भर, एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपने है दुरक्षाक में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 गो थोप दे इसे बोलेगा 5 गो लंदन के तुई देश सेफन 3 में तुई देश 21 में ये काबुल मदुरा और द्राक दे सेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंदन के डाक के माढ़ाड़ी से एक्सक्यूजर करवाई सेगा यानी कि मदुरा अब एकर बाग रहे में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस ऑफ खपाकिंग काराकास वो करोड़ के पकड़े रहा 3 तारीख जनवरी में अमेरिका से त्रुप होकर घर में से ले गए रहा एंड एक पर वैदा नाना डफर इन स्टार्स एंड ओख फरा एंड से सीज दिल फास इन न्यूयॉर्क वार बेडन हिस्ट्राफ साकन अफवाखतन से है वही जनवरी बेहद इस फर्स्केने फॉर रखतन अनस्कुल्ड खप्लेट। तो यहाँ बताए कि बड़ी लंबा चौड़ा होकर बारे में लिखल है दोस्तों, लेकिन मदुरा के बारे में हमें इतने बताएला। अब जब ओके एस के शिष्य के बारे में हुई तब तो और बड़का बातचीत हुई भैया। देखो गया ना छोड़ो हम जाए तरी नाफो के बारे में, नाफो भाई नाफो उक्रेन के सीफन तक मिलियार्ड फ्राई करी सेगा तो ये देर तक लंदन नाफो के इस अंकारा में बताया सेगा कि सीफन तक मिलियार्ड पैसा देगा उक्रेन के और का बोलेगा जो रिसलान से लड़िया के अंडरस्टैंड करे के फील फॉर द हेल्थ इस ऑल द यूरोपियन यूनियन ऑफ द लंदन ऑफ सोनलक बलोव मार उक्रेन से बन खनोते विल्डन Oekraïne verzekering van een gestage stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Ortolonjane Madura banai zo'n barca fabriek bhaiya jahan pe drone udawe hai aur drone udai udai fene Rusland me hua ke ori rafinar de rei me dak ke plata kar de ise aur aaj Venezuela jo itra barca export land raha तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रह गए है भैया बेचे के आदमी लोन 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रही में खड़ा है। तो लोन जानो एक जमाना रहा सुरीनाम में भी हम लोग रही में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सुरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रही बातचीत है। तो ये बातचीत है हमारे

0: make sure so anybody getting married, you know.
1: तो यही चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। इधर इन बाय बाय स्वाई स्वाई धर्मेन इधर इन बाय बाय।

दोस्तों, हम रेडियो फाहून के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 25 और दनहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एतर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुन सकते हैं, www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और जो अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: मतलब भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है दोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा का उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोग इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंदी और उषा किरण ने, फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर, और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर, और ये गीत है नाचो बेटी नाचो, और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया, माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है, और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया, तो हम बोली बता दी, चलो सिरा जाए।

0: और दोस्तों मजा कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस की सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोले ला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नयोन के कौन फुलवा कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला हो।

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरीशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाएं। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयज से एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरीशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

0: और हे लंगड़ों के बाद चीज को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों। और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए।
1: काम करवा

0: प्यार करे खाती चांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गा कर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

और माटी बड़ा अलमोल है दोस्तों, और ये सब गीत हमने कभी सुना नहीं है, तो आज मिलकर सुना जाए।

मुरिका के कुछ सॉन्ग है दोस्तों। यहां से आपको हम इंडिया का कुछ भोजपुरी सुनाएंगे, पवन सिंह काजल रघवानी का, प्रियंका ने इसमें काम किया है, जोंग फान ने छलकाता हमरो जवनिया।

चल चिखले जवानी। तो जवानी के बाद हम फिर एक सॉन्ग लेकर अभी आएंगी दोस्तों, और वो सॉन्ग क्या है, जोश में आके होश मत गवाइयो।

जूस में आके और जूस में आके और आगे चला हो भोजपुरी सॉन्ग। और ये है हमारा मॉरिशियस का ये गीत है जो राजकमल चिंता मुनि ने गाया है हमारे दोस्तों। यहां से और आगे हम चलते हैं राजकमल की ओर, फूली गिरी।

बस दोस्तों रानी बनावे तो के सहरिया में, और रानी बनावे सहरिया में भोजपुरी जों का ये गीत है।

जरूर तेरे प्यार में क्या क्या होता है। अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है। ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

बस मोहब्बत इनायत करम देखती है। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों, यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को, तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायंगनी कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के, और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

0: कबूल है
1: और कबूल हो गया है, और अगर कबूल हो गया है तो जान ले सब तैयार ठीक ठाक हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी के प्यार जो है वो बहुत दूर रहते हैं दोस्तों, और जगत दूर दूर रहते हैं तो दिल में बहुत सा दर्द होता है, सोच होता है। रात को लोग सो नहीं पाते हैं कि कहते हैं कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया के रस्मों रिवाज को तुझसे अपना बनाने को जी चाहता है। तो दूरी के मतलब ये है दोस्तों कि तेरे वजूद के खुशबू, तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में। ये और बात है कि नजर से दूर रहते हैं तो हम चलते हैं, ओ सनम, ओ हमारी सनम, ओ हमारी सनम, उदित नारायण की ओर हम चलते हैं और पामेला जैन की ओर, जिसमें बॉबी देओल और लारा दत्ता ने काम किए हैं, कि ओ सनम मेरा सनम।

और ओ शर्म दोस्तों, और ओ शर्म में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, नाराज हो गए है क्या अरिजीत सिंह की ओर है।

0: कि मेरे बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: ओफो, ये फिर कहाँ चला गया?
2: तो फिर साइन कर इस पे।

0: क्या कर रहे हो तुम?
1: हाँ याद है ना,
0: तुमने प्रॉमिस किया था।
2: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

और बिदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यागनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का क्याओ। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's that smirk?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी, और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और अपवादिका राम सुकुल आपको सुनाने वाले थे। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल के साथ में। मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। देवेंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

प्रकाश बी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

रुबिन अधीन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं आजारे परदेसी।

मैं तो कब से खड़ी इस बार भी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज़ में कविता राम की सुन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं कैचिंग माउकदी।

अभी आप सुन रहे थे कविता राम किशुन जी की आवाज में कैचिंग मालगाड़ी। प्रोग्राम में आ रहे हैं सविता सिंह जी दुपट्टा।

सविता सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दुपट्टा। मैं प्यार का दीवाना रायन मनोरथ प्रोग्राम में आ रहे हैं।

पर सुन रहे थे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मैं शोभा भैया पर सुन रहे थे। दुबराज प्रसाद और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं

जल दी के मड़िया खोल, दुबराज प्रसाद और सविता सिंह जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संजय शिवराम और वादिका राम सुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

Vadi karam sukulor sarasa me dekhe संजय शिवराम जी हाँ, संजय शिवराम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संदेश सिद्दीन और सविता सिंह आपको सुनाने वाले हैं सजनवा।

सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे संदेश दिन और सविता सिंह जी की आवाज में रानी दत्ताई जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

रानी दत्तई जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये चटनी सॉन्ग। मोर चिरैया तोर चिरैया, आदित्य रामसुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

आदित्य राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दो चिरैया मोर चिरैया। सोनिया सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, शेक मी वेस्ट।

0: सोनिया सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे शेख में वेश। सूते ना देवे सलेक्टा जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।
1: Concept, select the beats, show band, Holland's finest.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर एंतिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग 24 घंटे रोजाना लगातार दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम प्रोग्राम को सुन सकते हो। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज अंकल्स एंड सीकर बदंत हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि आपका धंधा भी फटाफट चल पड़ेगा, या तो आपका इवेंट हो जो ना हाउसफुल हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं। डिफाइन सिस्टम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कंटोर फन मंडे टू फ्राइडे फन 9 मॉर्निंग्स टू 5 मिडनाइट ऑफ 070-365-2247, दफ्तर कतार का नंबर और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना है, सॉफ्ट टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है हमारे फुल टीम की तरफ से कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का यानी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी में तक फेर तक पर। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इवन फन हार्ट वेलकम एंड आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे दूसरा अध्याय के तरफ, हमारे पॉपुलर संग नामी संगीत का, और वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हॉलैंड और कुछ सुरीनाम देश के कलाकार आप सुनेंगे। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरीनाम एंड हॉलैंड। तो अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, जिनका पैदाइश हुआ है पाकिस्तान में और फनम से नीघन तीन दार वोंट है इन नीदरलैंड। बखन भाई द म्यूजिक फरमासी स्ट्रेंजर्स और सभी बैंड में हमारे गा चुके हैं ये महान गायक, और कितने शोज भी तकरीबन द्रीम फेर तक यार से जब से वो मैदान में उतरा है कितने शोज भी दे चुका है। आजकल तो जबरदस्त पाकिस्तान खाना भी पकाता है, कैटरिंग करता है कश्मीर, और ये जबरदस्त गायक एक महीना हुआ है ये अति सुंदर सॉन्ग को रिलीज किया है। चलो आज चलते हैं हम मैस्ट्रो बॉबी जेकब के जबरदस्त आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ है भाईजान, किया जबरदस्त गाया है, ब्लेसिंग्स। चलो आज चलते हैं हम।

गाया है चलो आज चलते हैं हम। मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का मैस्ट्रो बॉबी याकोब। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश में कितने शोज दिए हैं, हॉलैंडीज का जबरदस्त गायक है। इनका पैदाइश हुआ है भारत देश में और नेहिंटिंग ट्वीन तख्त में जब ये आया था बाबला के साथ, बाबला जी कांचन जी के साथ शो देने यहाँ हॉलैंड में, तो हम लोगों के साथ ये महान गायक का मुलाकात हुआ। नेहिंटिंग सेशन तख्त में आया हॉलैंड देश में और तब से शुरुआत किया स्ट्रिंजर्स म्यूजिक फॉर्मेशन में और तब से कितने बैंड्स में गा चुके हैं। उन्हीं के मशहूर आवाज में आप सुनेंगे शिखर कुमार जी के वॉइस में छूकर मेरे मन को इन अनदर स्टाइल। ब्यूटीफुल सॉन्ग और महान गायक आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

हॉलैंड हॉलैंड मशहूर गाने वाले उस जमाने का वो मिस हार्न ऑफ स्टेट्स द ग्रेट अबीदा को राइशा रामजान जी को लाते हैं प्रोग्राम में और उन्हीं के मधुर और ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे क्लासिकर तुम्हें अपना बनाने की उन्हीं के स्टाइल में।

Ashabashi, Georges Ganewali uit de jaren 70-80. Olindiska, The Nightingale, Abida Ramjani. De koude Georges, de gaik doet pijn, hè. Abida bhi, jawan. Kya baat hai apni jawani, hè. In haar glorietijd ook. Chhod ke hum log chal gaye. Aur ek Georges gaik jo... मेरे ख्याल से दो साल होने वाला है हम लोगों को भी छोड़ के चल गए और उन्हीं के यादें रह गए हैं और वही यादें मैं आप श्रोताओं को सुनाते रहता हूँ जबरदस्त गायक अदियार तख्तख 90 मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे From the album Sweet Melodies with Mastana 1986. Kya jabardast gayak tha ye mahan gaane wala. And Haikon ook heel veel meer hoor. Ek jabardast drummer tha. En speelde ook alle basis instrumenten natuurlijk. Milke sunte hai. The great Shahid Wahid Hussain ke yaad mein. Tauba-e-Nazari.

Maestro Hafiz Khan Wahid Hussein Kisaj per edition Drabiana Amsterdam is Suna Awaz Tha Maestro Shahid Wahid Hussein Jika. यार वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए. कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स भेजा है यार का यार भी जो जिगरी दोस्त है भाई भूपेंद्र जी. कुछ ताजे ताजे शेयर्स अर्ज किया है यारो. ये दोस्ती चिराग है इसे जलाया रखना. ये दोस्ती तो चिराग है इसे जलाया रखना. ये दोस्ती गुल है इसे खिलाया रखना. हम रहे ना रहे इस जहां में यारो. हम रहे ना रहे इस जहां में बस हमारी याद दिल में बसाए रखना. क्या बात है. कभी जो हम पे जान दिया करते थे. कभी जो हम पे जान दिया करते थे. जो कहते थे वो मान लिया करते थे. कल अनजान बनकर पास से गुजरे गए वो. यो जो दूर से पहचान लिया करते थे. सब कुछ है मेरे पास बस दिल की दवा नहीं. सब कुछ तो है मेरे पास बस दिल की दवा नहीं. दूर वो मुझसे है पर उसे खफा नहीं. दूर वो मुझसे है पर मैं उससे खफा नहीं. मालूम है अब भी प्यार करती है वो मुझसे. वो थोड़ा जिद्दी है. वो तो थोड़ा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं है. थाम लो मुझे बेहोशी छा रही है. थाम लो मुझे यारो. मुझे तो बेहोशी छा रही है. पलकों पे आंसू लेके तेरी याद आ रही है. प्यार तो बेपना मेरे दिल ने किया है तुमसे. प्यार तो बेपना मेरे दिल ने किया है तुमसे. फिर सजा क्यों मेरी नजरों पा रही है. मेरे स्टेटस का शौक रखने वालों. मेरे स्टेटस का शौक रखने वालों. मुझे कभी आदत ना बना लेना. मैं वो एक लहर हूं. मैं तो वो एक लहर हूं जो रोक जाने की चाहत. जो रुक जाने की चाहत नहीं रखता. तो ये था कुछ शेयर्स आगे के प्रोग्राम में. कुछ कोशिश करूंगा और सुनाने को. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. एक और जबरदस्त गायक ऑल्सो बोर्न इन पाकिस्तान और तकरीबन 1970 से गाता चला आया और इतने नाम कमाया सुरिनाम देश हॉलैंड देश से. और गाते गाते हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए. मैस्त्रो नदीम खान के ब्यूटीफुल आवाज़ में खिजा के फूल.

महान गायक मैस्ट्रो नदीम खान जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक और मशहूर गाने वाली आईडियार तख्तख एम्स्टरडेम के रहने वाली डिग्रेट निशा कृष्णा संतु जी के ब्यूटीफुल आवाज में जो उस जमाने में म्यूजिक फरमासी पंदेरों में गाती थी, और वो सुनाती है त्राफासी के साज और संगीत पर थारी चांदनी गीता दत्त जी का गाया हुआ ये ब्यूटीफुल ओल्ड सॉन्ग।

Beautiful song, wonderful song composed by Maestro Harold Beerfleet. Aur sunadi aap sabhi ko Nisha Krishna Santu Tari Chandini. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक आईडीआर 70-80 द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्योंकि ये तलत महमूद जी के गाने ज़्यादा से ज़्यादा गाता था और ये कुछ रफ़ी साहब जी के आवाज़ में कुछ निकाला है अपनी आवाज़ में मैस्ट्रो विम डमरी यकीन कर लो रफ़ी साहब जी के गाया हुआ ये अति सुंदर बयान विम डमरी के आवाज में

Atiși îndrăbeani, șrutau ghișimea mii, pișii chiagăia, ori sunani valete, maestro Michel Lechman, ori Indra Ram Charanji, uit 1954, live, 84, live recording van, weet je, Mastana Orchestra. हमारे प्रिय श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊंगा तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है आप

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अनतिलिक बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलिक वेरक्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड अनतिलिक हेल हार्टलिक डंक। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, शोश वगैरह इवेंट वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और ये भी वर्ल्ड वाइड। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप कहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं क्यों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर देश भर में नहीं मिलेगा। आएगा रो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं फॉर्मांडा टेलीफोन दफ्तर कतार का नंबर 07 3 6 20 47 और स्टूडियो कतार का नंबर 07 3 6 20 47। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो बैंड फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं अपने 07 3 6 20 47 या तो आप तार करें 07 3 6 20 47 पर स्टूडियो पतार का नंबर। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत, और वो हमेशा की तरह कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक आप सुनेंगे। तो प्रोग्राम में लेकर आते हैं हमारे हॉलैंडीज का एक जबरदस्त गायक जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। एंड वन ऑफ 1983 बखान बैड हाक्स पॉप फॉर्मेसी द स्ट्रेंजर्स, और अभी तक उसी में गाता है और कितने बैंड्स में शोज दे चुका है सुरनाम देश, और कितने देशों में जा जाकर अपना शोज भी दे चुका है। अ ग्रेट सिंगर द ग्रेट बॉबी याकब जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनेंगे कि वादा दिन आया। इट्स अ क्रिसमस सॉन्ग।

पद्दा दिन है आया ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को गाने वाला हॉलैंड देश का जबरदस्त गायक बॉबी याकोब। अगला बयान एक और महान गायक है हमारे सूरीनाम देश का मिस्टर के कवीश कालका जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे दिल दे दिया है। A great song covered by Maestro Kavish Kalka, music by Brother Ravish Kalka.

कॉर्पोरेट सॉन्ग है और अपने ही अंदाज में ये बहुत ही मुश्किल सॉन्ग द ग्रेट श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ नगमा आप सुनेंगे, तुम बिन बाय निशा मदारन।

ईशा अमरधारन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये कवर सॉन्ग आप सुना तुम बिन, ओरिजिनल बाय द ग्रेट श्रेया घोषाल जी। एक और जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में, और सुनाने को जा रहे हैं एक और महान गायक हमारे हॉलैंडेस का, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और कितने बार सूरीनाम देश में अपना शो देने गया, और अभी तक लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और रोज़ाना रेडियो पर इनके नगमे आप सुन सकते हैं हमारे सूरीनाम देश में। मैस्ट्रो नदीम खान जी का सुपर हिट सॉन्ग कंपोज बाय द ब्रदर्स ज्वालांत श्याम लक्ष्मण। Rearrangement by the brothers Lechman.

क्या बात है, होता है यारो लाइफ रिकॉर्डिंग है ना, तो श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया दो मशहूर गाने वाले जो मरहूम हो चुके हैं, द ग्रेट शहीद वाहिद हुसैन एंड अबिदा रामजान, इंडियन डायमंड्स के ब्यूटीफुल सीडी से निकाला हूँ, एंड इस सीडी ओक फन शहीद वाहिद हुसैन। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द चटनी क्वीन, बिल्कुल नया सॉन्ग चलत मुसाफिर मशहूर गाने वाली अश्नी माता दिन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान स्पेशल।

Beautiful song, Chalet Moos, Zafir, covered by the Chutney Queen from Rotterdam, Ashni Matadin. एक बिल्कुल नया नगमा है, कुछ तीन महीने हुए हैं निकाली है। रिकॉर्ड जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, क्लोज टू माय हार्ट, बचपन से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे जिगरी दोस्त देव नारायण राम बरन जी का सुपुत्र है और वो भी एक बेहतरीन गायक था हमारे सूरीनाम देश में। नया जमाना ऑर्केस्ट्रा में गाता था और बाद में द इंडियन गार्ड्स खाद कुछ सालों तक गाया। उन्हीं का सुपुत्र द बैंड लीडर फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी द स्टार्स जेमी राम बरन जी को लाते हैं प्रोग्राम में। मेयर बकैंत में मिस्टर बल्ले बल्ले कुछ दोस्तों के साथ ये अति सुंदर बयान को तैयार किया है। देर थी तरीका, कुछ दिन हुए है निकाला है, लेकिन कुछ दोस्तों में जब कुछ होते ना, कुछ अंडमंड हो जाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा नगमे तैयार होते हैं। लेट स्पेशल ऑफ द टेक्स्ट खवाद निमर बाय जेमी रामबरन एंसन फ्रिंड शारोन राफनबर्ग रायन अब्दुल असीज अंत फारिस बरसाती। मिल के सुनते हैं।

क्या बात है, जेमी रामबरन एंड फ्रेंड्स ड्यूटी टरीका। तो हमारे यार कुछ शेर सजाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। दोस्ती के बारे में शेर से भेजा है ताजे ताजे भाई भूपेंद्र जी। अर्ज किया है यारों की, दर्द की हर एक दर्द से गुजर गया हूं मैं, दर्द की हर एक हद से गुजर गया हूं मैं, फिर ना कभी सिमटूंगा यूं बिखड़ गया हूं मैं, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, सांस मुझ में बाकी है फिर भी मर गए हूँ मैं। साथ देने का वादा किया था, साथ देने का वादा किया था, सिकवा सहने का वादा किया था, अगर वो हमारे बिना खुश है तो ये ही सही, कोई क्योंकि हमें तो उन्हें सदा खुश रखने का वादा किया था। दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया, गम को आंखों की छिपाना, गम को आंखों में छिपाना सीख लिया, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, दबा के होंठों को हमने मुस्कुराना भी सीख लिया। दूर जाकर भी हम दूर जा ना सकेंगे, कितना रोएंगे हम बता ना सकेंगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, दर्द इस बात का होगा कि हम आपको भुला ना सकेंगे। यूं तो सदमों में भी हंस लेता था मैं, आज क्यों बेवजह रोने लगा हम, आज क्यों बेवजह रोने लगा हूं मैं, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, फिर आज क्यों लगा सब खोने लगा हूं मैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी तकदीर में ही चाहत नहीं, मेरी किस्मत को लिख कर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, मेरी किस्मत को लिख कर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, पूछा तो बोला ये मेरी लिखावट ही नहीं। था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक है हमारे हॉलैंडीज का, इनका पैदा हुआ है भारत देश मुंबई में, और फनाफ नीक दिन ससन तख्त इस है और फर्स्ट इन नीदरलैंड के हम लेर कहने नीक दिन 82 तुन है मैं बाबला इन कांचन हीर फॉर सम कॉन्सर्ट वास एन सो लंग सैन वे लंग फ्रेंड्स है। यार गेजोंगे फॉर द हाग्स टॉप फॉर्मेशन द स्ट्रेंजर्स दीवाना लेके आया शेखर कुमार, म्यूजिक बाय द इंडियन एक्सप्रेस, इट्स अ लाइव रिकॉर्डिंग।

मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का डिग्रेड शेखर कुमार। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द क्वीन ऑफ मेलोडी फ्रॉम हॉलैंड नाइटिंगेल फ्रॉम यूरोप भी लोग बोलते हैं, क्या क्या टाइटल नहीं मिल चुकी है ये महान हमारे गाने वाली को। और हॉलैंड देश का शान है। लता मंगेशकर जी के बहुत ही ढेर नगमे गा चुकी है और जितनी खूबी से ये गा लेती है मखौख से खौर्द, लेकिन आज सुनाने वाली है अलका याग्निक जी का गाया हुआ सुपरहिट सॉन्ग तीन यार खलेद हेफ्सदित नेमोर खुसोंग इन थिएटर तालिया इन सुरीनाम अंडर लीडिंग फ्रॉम रियाज अहमद अली मेट सैन यादगार ऑर्केस्ट्रा। मिल के सुनते हैं गली में आज चांद निकला द ग्रेट मधु लाल बहादुर सिंह।

0: Soldat Alia Madurii.
1: Shabash, shabash, shabash, beautiful song. Sunai aap sabhi ko hamare Hollandis ka mashhoor gaane wali The Nightingale, Madhu Lal Bahadur Singh, live recording with Yadgar Orchestra at 2014. हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।

0: कौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीलिक तबला इस तरफ या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलिक वर्क्स बॉयज अंत गर्ल्स एंड बदंत सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, इवेंट और खनिशातर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि आपके धंधा फटाफट चल पड़ेगा। ये बात मैं आप सुनता हूँ से इसलिए कह रहा हूँ यारों की, क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने रसीव तक, डिफेंस तक, 2027 तक। दफ्तर का तार का नंबर, स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यूबेंस वन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, जोर तोर से और थोड़ा जोर तोर से चर्चा करते रहना हम लोगों के बारे में, और इसके लिए आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी कोशिश करें बनाने को। सभी जानकारी इसके बारे में इन फरबंध में हेत लिट वार्डन फनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो मुझे आप कंटोर बैल सेफ तक डिफेंस तक 2027 तक पर, तो जरूर आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रोको भी बनाए। तो एक ही दम लेकर चलते हैं, और जैसे मैं कह चुका था एट लास्ट यूट्यूब इन प्रोग्राम एस मेस्टा द न्यू बॉलीवुड फिल्म नेमर्स हेडनदास म्यूजिक, और मैं पेश करने वाला हूँ इस जमाने का एक महान कलाकार, रिमेंबर द नेम मैस्ट्रो विशाल मिश्रा, जो बहुत ही जबरदस्त गायक है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है और गाना भी खुद लिखता है। तो उसी के साथ जो संगीत पर उसी का लिखा हुआ गाया हुआ नगमा आप सुनेंगे, तू भी सताया जाएगा, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय मैस्ट्रो विशाल मिश्रा।
1: ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

0: करती हूं तू हर रोज मरे, मैं जिस तरह मरती हूं।
1: दिल को छू लेने वाला बयान तू भी सताया जाएगा। A great composing singing by maestro Vishal Mishra, और अल्फाज भी था ये maestro Vishal Mishra जी का। अगला बयान गुलाबी आँखियाँ, क्या बात है। म्यूजिक बाय मीत ब्रोस, अल्फाज है कुमार जी का और आवाज़ है maestro Jubin Nautiyal, Shashi Holkar और the great मीत ब्रोस जी का। मिलके सुनते हैं स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है गुलाबी अखिया, इस जमाने का नया सॉन्ग है, आप सुना बाय जुबी नौटियाल, शशि होलकर और मीट ब्रोस। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, द क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का एंड द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक भारत देश का इस जमाने का, दो जबरदस्त गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का, जिसपे मेरे नाम से गर्व है, द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल और द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप म्यूजिक सुनिधि चौहान, टुगेदर इन वन ग्रेट सॉन्ग छैला फ्रॉम द मूवी भूमि। मिल के सुनते हैं, कंपोज एंड प्रोड्यूस बाय द ब्रदर्स सलीम सुलेमान और अल्फाजे है श्रद्धा पंडित जी का स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम। क्या

0: Beautiful composing by the brothers Salim Suleiman और आवाजें थे हमारे दो मशहूर गाने वाले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का श्रिया घोषाल और सुनिधि चौहान। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है चल कुड़िए, महान गायक इस जमाने का मैस्ट्रो इन द भांगड़ा सॉन्ग्स द ग्रेट दिलजीत दोसंझ जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। साथ दे रही है मलकाए हुस्न द ग्रेट अलिया भट्ट, म्यूजिक डायरेक्टर मनप्रीत सिंह के साथ पर और अल्फाजे है हरमानजीत सिंह जी का। क्या बात है, इट्स भांगड़ा टाइम फॉर यूली एनतीलिके एक जबरदस्त बेहलत के स्टाइल में ये भांगड़ा बनाया गया है। मिल के सुनते हैं ओक इन द भांगड़ा लैंग्वेज रिच पंजाबी में।
1: मेरी राखी पहनता है ना तू, तू मेरी प्रोटेक्शन में है, तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी कभी भी।

0: Chili. Beautiful song apri sertan ke sewa me peski agya diljit do sanji ke beautiful awaz me saath de rahi thi abhinetri the great Alia Bhatt ji. आज शरा बेला अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द ग्रेट श्रेया गोशाल जी. म्यूजिक अरेंज बाय शामिक चक्रवर्ती.
1: ये मौन रागनी अनेक प्रार्थना गान हुए छे.
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अभी ना जाओ छोड़कर होठों से छू लो तुम आज जाने की जिद ना करो अमर कछे मन राग मनी

तो जी हाँ यारो, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो, इस मोहब्बत की किताब के दो ही सबक याद हुए, कुछ तुम जैसे आबाद हुए, कुछ हम जैसे बर्बाद हुए। लोग मुझसे भी कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, लोग मुझसे कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, यानी कि मेरे लिए दुआ कीजिए। देखो देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। कितना हसी मौसम था जब वो मेरे सामने रहती थी, कितना हसीन मौसम था जब वो मेरे सामने रहती थी, अब वो ख्वाबों में मिल जाए ऐसे भी हालात कहाँ। जिंदगी तो वही थी जो मैंने तेरे साथ गुजारी थी, अब तो सिर्फ मैं जीने का रसम अदा कर रहा हूं। कुछ पाना है तो मेहनत करो भैया, कुछ पाना है तो मेहनत करो दीदिया, किस्मत की रोटी, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, समझ सको तो समझो इन दिल जलों के जज्बात को, समझ सको तो समझो इन दिल जलों के जज्बात को, लगता है मौसम ने इनकी सखम फिर से हरे कर दिए। तो ये था कुछ शेर्स आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारो आप सभी को, और इस बार कुछ सुनाते हैं भैया दिलजीत दोशंत बादशाह जी के साथ मिलके, म्यूजिक कंपोज बाय राज रंजोध, और गाने वाले हैं दो महान सिंगर्स दिलजीत और एफटी बादशाह। ब्यूटीफुल सॉन्ग मिलके सुनते हैं भगेरे गन में, मच्छा खोजल जाए। लाइव रिकॉर्डिंग है यारो, होता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग में ये सब तो कभी कभी हो जाता है। नहीं ना।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

में जलती रही। क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते है।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माई जी मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइती मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

पुराने वाला माइकी बुके आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर और वो है पद्मान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

और अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

रफी परमाज श्री मोहम्मद रफी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफ तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है, मूवी मूवी मूवी राज कपूर पद्मिनी का ये

दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें मैथिली मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी के नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथिली बुके ए नाइटिंगेल, लता जी का ये सॉन्ग है।

फूल को भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए और कौन सा दीवाना आएंगे हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

और नजर बचा कर चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। इस गीत का है देखा है पहली बार, और मूवी का नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है जाजन

भी प्यार करते हैं, तुझको जन्म ताराया है लल्ले वारदे से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं ती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइकी मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा। निकट हो द्रियन शस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: वालों की खैर क्यों ना, जुल्मी ओ जालिम लजाना हो तेरे।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते है गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

0: इसमें उफी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए है नौजात के साथ में
1: ना दिल ना
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को नेकतीन फैफ तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेस का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कही पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दिल का भंवरे करे पुकार। और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत दोस्तों, देखती होंदत ऐसा सो फेर तक का, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी मौसी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों, toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien, maar hamare dosto jo hai yahan pe radio par wo sab is film dekh chuka hai aur humse kaha ki Johnny zarur chalana, to hum zarur chalayenge, aao milkar suna jaye, ye kaalam nahi hai dosto, ye kuch aur।

हम उड़ जाएंगे, मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए है शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं

Jal, 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार, 1951 का

भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सड़क के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करिए दोस्तों, और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे। नाइटिंगेल लता जी और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है उरन खटोला मूवी।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है तो किसी के काला दिल भी होता है।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है